0: तुमको भाभी
1: छिमी बोगे ले उलू हमारो तो नहीं लें ता सच्चे माता उसे ले हुए ही फलों से तिवरी से ये तो लियारा दे आकू नहीं मुझे छिमन दे या जब जब मुसारे के जैसे सच्चे हमारे लोग तिवरी स्तिको जैसे नहीं सच्चे केरेट हम उन उलू मलाक हम जोफ्तो नहीं कितो जिन्दिन ने फसाई पमारु चाकू नहीं नहीं कितो आकू अविलिमुरा चिले तक ले उलू मुझे के छिमी बोगे सच्चे अंसानो माता उसे ले विरी से Zezan mahatunga nai taraiko kumateluan virus tu di vahoga. Madagascar, njendina fa atu yansimu antuliara musare.

0: नको सुले बग ग्राम भीतर दिदग रुयो
1: गलक मने के देखिन जयान वही आ रे गमने के देखिन हला दे दगा